सने लाई सजी बहो सने लाई गाओ सच्चे नी मन तुम कल्याण भैरा है प्रधान सने सजिलो हो सहने लगा अच्छे मन कल्याण।

0: हेलो हेलो 1 2 3 चेक
1: तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज।
2: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल।